भगवान का घर है हमारी सभी सुनने वालों की सेवा में। मेरे तरफ से हर एक को सादर नमस्कार और आदाब सलाम। ये है ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन रेडियो SBS का प्रोग्राम जो आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है। जो बीमार या लाचार है भगवान से तंदुरुस्त के लिए प्रार्थना या तो अल्लाह से दुआ किया जा रहा है उन सभी के दुख और गमी हमेशा के लिए दूर करने के लिए। जिन लोगों के घर पर खुशियां ही खुशियां है, शादी सालगिरह, विवाह संस्कार, जन्मदिन या तो प्यारा प्यारा बच्चा पैदा हुआ है, तहे दिल से बधाई और मुबारकबाद पेश किया जा रहा है रेडियो SBS का पूरा और पूरा टीम की तरफ से। सुनने वालों आज बीफ बृहस्पतिवार का दिन है, आप सभी सुनने वालों को एक शुभ सुबह शुभ दिन पेश किया जा रहा है रेडियो SBS का पूरा और पूरा टीम की तरफ से। रेडियो SBS का वेबसाइट radio.sbs.nl, उसी वेबसाइट के जरिए अपना मोबाइल टेलीफोन टैबलेट आईपैड के जरिए कंप्यूटर के जरिए भी हमारा प्रोग्राम को आप सुन सकते हैं। मैं हूं आपका खिदमतगुजार रबीन। यहां से प्रोग्राम भजन यात्रा आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। भजन यात्रा प्रोग्राम का पहला भजन हमेशा होता है हरिहरन की आवाज में, सुबह सुबह लो शिव का नाम। पेश किया जा रहा है हमारी सभी सुनने वालों के लिए और सभी भक्त प्राणियों के लिए।

रेडियो SBS की जरिए पेश की गई सुबह सुबह लो शिव का नाम हरिहरन के आवास में ये सुंदर सा भजन आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में पेश की गई रेडियो SBS की जरिए अभी आपने सुना। प्रोग्राम भजन यात्रा पेश किया जा रहा है और आज का प्रोग्राम जो है सुनने वालों आप जरूर और जरूर सुनते ही रहना, जहां जहां पर भी आप सभी प्रोग्राम को सुनते हैं। हर सुबह आप सभी सुनने वालों की सेवा में भजन यात्रा प्रोग्राम पेश किया जा रहा है रेडियो SBS के जरिए। अगला भजन जो आज के प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में एक सुंदर भजन होगा। और वो भी देवशीष दास गुप्ता जी की आवाज में, चले मिलकर सुनते हैं ये सुंदर सा भजन जो आज के प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है।

जी की आवाज में ये सुंदर भजन आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश की गई। आशा उम्मीद है आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया है। चले अगला भजन जो

सुंदर भजन बस प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में आसरो बीठे सुंदर सा भजन आपने सुना और बेहद पसंद किया। रेडियो SBS की जरिए जो पेश की गई सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में चले प्रोग्राम में अब की बार हम आपको ले चलते हैं ये सुंदर भजन की ओर जो आप सभी सुनने वालों की सेवा में बेला जी की आवाज में पेश किया जा रहा है।

बेला जी के आवास में आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश की गई रेडियो SBS की जरिए अभी आपने सुना। चले प्रोग्राम में अब की बार हम आपको ले चलते हैं ये सुंदर भजन की ओर शर्मा जी के।

रेडियो SBS के जरिए शर्मा जी की आवाज में सुंदर सा भजन बस प्रोग्राम भी पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। प्रोग्राम भजन यात्रा पेश किया जा रहा है। सुनने वालों, स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 0322 66 66 11। अबकी बार भजन जो प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है आप सभी सुनने वालों की सेवा में विक्रम के आवाज में ये सुंदर भजन आप सुनते ही रहना।

0: सुनने वालों की सेवा में बस पेश की गई रेडियो SBS के जरिए। चले प्रोग्राम में गोपाल जी की आवाज में ये सुंदर भजन पेश किया जा रहा है।
1: मुझे कुछ नहीं चाहिए और मुझे अपने लिए कुछ नहीं करना है, ये तीन बातों शीघ्र उद्धार करने वाली है। पिता पुत्र प्रभु से कहते हैं,

ही सुनने वालों की सेवा में। सुनने वालों चले यहां से प्रोग्राम में आरती भजन की ओर हम आपको ले चलते हैं और आरती भजन पेश किया जा रहा है रेडियो SBS का पूरा और पूरा टीम की तरफ से, हमारी तरफ से, हमारा पूरा परिवार की तरफ से, आप सभी सुनने वालों के लिए, सभी भक्त प्राणियों के लिए, उन सभी के लिए जो बीमार या लाचार है, सभी दुखित प्राणियों के लिए, सभी बच्चों के लिए, सभी जो आज नौकरी करने वाले हैं, काम करने वाले हैं, सभी को शुभ दिन पेश किया जा रहा है। और हमारे सभी सुनने वालों जो दुनिया की कोने कोने में रेडियो SBS का प्रोग्राम को सुनते हैं, उनके लिए और उनके पूरा परिवार के लिए, हर एक के लिए शुभ सुबह शुभ दिन के साथ ये सुंदर आरती भजन पेश किया जा रहा है।

तानु और आशा जी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चले प्रोग्राम में हिमेश रेशमिया एन श्रिया प्रोग्राम में

शमिया एंड श्रेया घोषाल की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चलिए प्रोग्राम में हम आपको ले चलते हैं श्रेया घोषाल और शान की आवाज में ये गाना जो पेश किया जा रहा है।

रेडियो SBS के जरिए उदित नारायण और अलका जी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चले प्रोग्राम में अदनान सामी और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है।

रेडियो SBS के जरिए उदित नारायण और अलका जी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चलिए प्रोग्राम में गाना की ओर हम आपको ले चलते हैं। सोनू निगम और अनुराधा पोटवाल की आवाज में पेश किया जा रहा है

वालों 9 बजकर प्रोग्राम में 4 मिनट व्यतीत हो चुका है। आज दिव्य बृहस्पतिवार का दिन है, 16 जुलाई का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है। आप सभी सुनने वालों को शुभ सुबह, शुभ दिन, जहां जहां पर भी आप सभी प्रोग्राम को सुनते हैं। मैं हूं आपका खिदमत गुजार अबीन। चून का यही मतलब होता है कि यहां से पुरानी फिल्में, संगीतों का प्रोग्राम आप सभी सुनने वालों की सेवा में।

और आज कॉफी चाय के साथ भी आपको स्वागत किया जा रहा है। मैटन लेकरस्तु के खबाक यानी कि केक के साथ आपको स्वागत किया जा रहा है। तो चले यहां से पुरानी फिल्में संगीतों का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है। पहला गाना पेश करने से पहले आप सभी के लिए गर्मा गर्म कॉफी चाय बस पेश किया जा रहा है रेडियो SBS का पूरा और पूरा टीम के तरफ से। तो चले प्रोग्राम में पहला गाना की ओर हम आपको ले चलते हैं किशोर एन लता जी की आवाज में। किशोर और लता जी की आवाज में ये गाना बस पेश किया जा रहा है जादूगर तेरे नैना। किशोर एन लता

रेडियो SBS की सरिया किशोर कुमार एंड लता जी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में पुरानी फिल्मी संगीतों का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है। 9:12 व्यतीत हो चुका है। तलत महमूद और लता मंगेशकर प्रोग्राम में सुबह का तारा फिल्म का नाम चमक

दौरे लता जी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। आज स्टूडियो के अंदर काफी तार आते रहते हैं, सुबह भी काफी सुनने वालों बस तार कर चुके हैं और अभी तक जो टूट से तार स्टूडियो के अंदर आते हैं और बहुत से सुनने वालों बस रेडियो SBS का ऐप पर ऐप भी किया है, सभी को शुक्रिया धन्यवाद कि आप सभी जोर तोड़ से स्टूडियो की ओर तार किया है और रेडियो SBS का ऐप पर भी ऐप किया है। मौसम आज का है थोड़ा बदली बदली सा मौसम है, बादल छाया हुआ मौसम है, कहीं कहीं धूप भी दिखाई देता है और हो सकता है कहीं कहीं रिमझिम बारिश भी हो सकता है। चले प्रोग्राम में मोहम्मद रफी और लता जी की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है, हम तुम्हारे लिए और तुम हमारे लिए, इंतकाम फिल्म का नाम।

तुम्हारे लिए तुम हमारे लिए गाना जो प्रोग्राम में पेश किए गए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में रेडियो एसबीएस के जरिए अभी आपने सुना। 9 मिनट बाकी है सुबह 9:30 बजने में, 9 मिनटन फोर 3:30 स्टूडियो टाइट हो चुका है। शहरी तरह से ये प्रोग्राम आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है। अब की बार फिल्म दिल तेरा दीवाना, उसी फिल्म का गाना मोहम्मद रफी और लता जी की आवाज में आप सुनते ही रहना। और गाना स्पाइक नेस शहर के रहने वाले हेंड्रिक और सीता बसंत, हेंड्रिक और सीता बसंत एक दूजे के लिए दिल जान से प्यार मोहब्बत के साथ ये गाना पेश कर रहे हैं। दिल तेरा दीवाना, मुझे कितना प्यार है तुमसे, मोहम्मद रफी और लता जी की आवाज में। स्पाइक नेस शहर के रहने वाले हेंड्रिक और सीता बसंत एक दूजे के लिए गाना मांग किया है आज की प्रोग्राम में।

मुझे कितना प्यार है तुमसे, मोहम्मद रफी और लता जी की आवाज में फिल्म दिल तेरा दीवाना, उसी फिल्म का गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई। और गाना को मांग करने वाले थे स्पाइकनिस शहर के रहने वाले हेंद्रक और सीता बसंत, एक दूजे के लिए प्यार मोहब्बत के साथ ये गाना बस मांग किया, जो आज की पुरानी फिल्में संगीतों का प्रोग्राम में जो पेश की गई है। शुभ दिन पेश किया जा रहा है और रेडियो SBS का प्रोग्राम जो है जरूर और जरूर सुनते ही रहना। चलिए फिल्म आज का पंछी, उसी फिल्म का एक गाना पेश किया जा रहा है माइटी मुकेश की आवाज में, और गाना को मांग करने वाली है रोटरडम नोट की रहने वाली शीला। शीला ये खास गाना आज के प्रोग्राम में मांग किया है।

खास तौर पर लता जी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। सुनने वालों रेडियो SBS का वेबसाइट रेडियो SBS.NL उसी वेबसाइट के जरिए अपना मोबाइल टेलीफोन टैबलेट आईपैड कंप्यूटर के जरिए भी हमारा प्रोग्राम को आप सुन सकते हैं। आपको खबर किया जा रहा है कि इन दिनों बहुत सी सुनने वालों होते हैं जो डीएबी प्लस रेडियो के जरिए प्रोग्राम को सुनते हैं। खासतौर पर हॉलैंड देश के बीच में मिड नीदरलैंड में दूर दूर शहरों तक ये प्रोग्राम डीएबी प्लस रेडियो के जरिए अपना मोटरकार में अपना घरों में आप सुन सकते हैं। और साथ ही साथ प्रोविंसी साउथ हॉलैंड में भी काफी दूर दूर शहरों में ये प्रोग्राम प्रोविंसी साउथ हॉलैंड में भी डीएबी प्लस रेडियो के जरिए अपना मोटरकार में अपना घरों में भी आप सुन सकते हैं। इन दिनों ज्यादा सुनने वालों है जो डीएबी प्लस रेडियो के जरिए बस प्रोग्राम को सुनते हैं। अच्छी आवाज में अच्छी साउंड में ये प्रोग्राम जो पेश किया जा रहा है डीएबी प्लस रेडियो के जरिए। पुरानी फिल्में संगीतों का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है। चले फिल्म मर्यादा की ओर मोहम्मद रफी प्रोग्राम में

मर्यादा फिल्म का गीत अभी आपने सुना, जो आज के प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुन वालों की सेवा में। बृहस्पतिवार गुरुवार का दिन है, 16 तारीख जुलाई का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है। आप सभी सुन वालों को बस एक शुभ सुबह शुभ दिन पेश किया जा रहा है और रेडियो SBS का प्रोग्राम जरूर सुनते ही रहना। द माइटी मुकेश

रेडियो SBS की जरिए माइटी मुकीस के आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में। चलिए पुरानी फिल्म माया की ओर, आज की पुरानी फिल्म में संगीतों का प्रोग्राम में ये गाना पेश किया जा रहा है मोहम्मद रफी एंड लता जी की आवाज में, तस्वीर तस्वीर तेरी दिल में।

एक बारी ही खूबसूरत गाना मोहम्मद रफी और लता जी की आवाज में पेश की गई। 1961 का फिल्म नहीं तीन होंगे तीन सस्तक का फिल्म, फिल्म का नाम माया, उसी फिल्म का गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई है। उसी सुनने वालों है जो पुरानी फिल्में संगीतों का प्रोग्राम को सुनते हैं हर सुबह, ये प्रोग्राम आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है 9 बजे से लेकर के और तकरीबन 11 बजे तक। किशोर कुमार प्रोग्राम में होगा, हिमसाब फिल्म का नाम है। फिल्म का नाम है।

ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई है आप सभी सुनने वालों की सेवा में। फिल्म चोरी चोरी उसी फिल्म का एक बड़ी ही खूबसूरत गाना लता जी की आवाज में बस पेश किया जा रहा है। चोरी चोरी फिल्म

और सभी सुनने वालों की सेवा में आसर। उम्मीद है कि गाना आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया है। फिल्म का नाम था आखिर क्यों। अमित कुमार और लता जी की आवाज में गाना पेश की गई है। अब की बार मोहम्मद रफी और लता

मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में। रेडियो SBS का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है, वेबसाइट होता है radio.sbs.com.au। उसी वेबसाइट के जरिए अपना मोबाइल टेलीफोन टैबलेट आईपैड के जरिए हमारा प्रोग्राम को आप सुन सकते हैं और सभी इंटरनेट रेडियो के जरिए ये प्रोग्राम दुनिया की कोने कोने में बस सुनाई देता है। मोहम्मद रफी और लता के बाद किशोर कुमार एंड लता होगा।

गाना जो पेश की गई किशोर और लता मंगेशकर की आवाज में अभी आपने सुना आज की प्रोग्राम में जो पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चलिए फिल्म हम झोली की ओर, सॉन्ग बाय मोहम्मद रफी एंड लता। आज की प्रोग्राम में खूबसूरत गाने खूबसूरत नखमे आप सभी के लिए पेश किया जा रहा है। फिल्म का नाम है हम झोली, मोहम्मद रफी और लता जी की आवाज में ये खूबसूरत गाना पेश किया जा रहा है।

फिल्म का नाम हम जोलिए, मोहम्मद रफी और लता जी की आवाज में ये गाना बस पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। हमारे बहुत से सुनने वालों बस प्रोग्राम इस वक्त सुनते हैं और अपना अपना रिएक्शंस भी देते हैं। चले अब की बार हम आपको ले चलते हैं मोहम्मद रफी और लता की आवाज में ये गाना जो पेश किया जा रहा है।

पद्मश्री मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाज में ये गाना पेश की गए, दिल में क्या है। एड फिल्म जिगरी दोस्त, उसी फिल्म का गीत अभी आपने सुना आज की प्रोग्राम में जो पेश की गई रेडियो SBS के जरिए। मैं हूं आपका खिदमत गुजार रबीन और स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 032-62-66-11। चले किशोर एंड लता की आवाज में आपकी बार ये गाना पेश किया जा रहा है। संगीत भरी स्टेशन रेडियो SBS का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है।

0: रेडियो किशोर कुमार एंड लता जी की आवाज में ये गाना पेश की गई है। रेडियो SBS का प्रोग्राम आप सुन रहे हैं। शहर उत्रेख हॉलैंडीज का सबसे खूबसूरत शहर से ये आवाज बस निकलते हैं। मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर, फिल्म का नाम काला पत्थर।
1: सांसों में तेरी

एक गाना जो पेश की गई फिल्म का नाम काला पत्थर, उसी फिल्म से मोहम्मद रफी और लता जी की आवाज में ये गाना भी आपने सुना। चले प्रोग्राम में लता मंगेशकर की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है।

लता जी की आवाज में ये गाना पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। आसरो मीठे लता की आवाज में ये गाना आपने सुना और बेहद पसंद किया है। तो चलिए एक बार फिर से लता जी की ओर हम आपको ले चलते हैं। साथ में होगा मोहम्मद रफी। मोहम्मद रफी और लता की आवाज में फिल्म तलाश का गीत पेश किया जा रहा है।

की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में आशा उम्मीद है कि गाना आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया रेडियो SBS के जरिए जो पेश की गई है। अब आज का प्रोग्राम जरूर आप सुनते ही रहना जहां जहां पर भी आप सभी प्रोग्राम को सुनते हैं। तो चले प्रोग्राम में अब की बार हम आपको ले चलते हैं फिल्म का नाम कभी कभी। हाँ, उसी फिल्म का एक गाना किशोर एंड लता जी की आवाज में पेश किया जा रहा है।

0: रेडियो SBS के जरिए किशोर कुमार और लता जी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम भी पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में। एड फिल्म कभी कभी उसी फिल्म का गाना भी आपने सुना। चलिए अबकी बार ये गाना की ओर हम आपको ले चलते हैं किशोर कुमार और फनी की आवाज में।
1: प्यार कभी कम ना करना सनम हर

राम की आवाज में ये गाना बसपुर गांव में पेश की गई। आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में सुनने वालों स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 03-22-66-6611। बाकी हर एक इन्फॉर्मेशन के लिए कंटोर का टेलीफोन नंबर है 03-22-65-65-60। चलिए आज की प्रोग्राम में कुमार सानू जी की ओर हम आपको ले चलते हैं। कुमार सानू और अलका की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है। रेडियो SBS का प्रोग्राम आप सुन रहे हैं, संगीत भरी स्टेशन शहरू तरह से ये प्रोग्राम आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है। एक काफी खूबसूरत प्यार भरी गाना आज की प्रोग्राम में कुमार सानू और अलका की आवाज में, इतना भी ना चाहूं मुझे कि तुमसे दूर ना रह सकूं।

दानु और अलका जी की आवाज में ये गाना बस आज की ये प्रोग्राम में पेश की गई। आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में आसरा उम्मीद है कि ये गाना आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया। रेडियो SBS की जरिए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में जो पेश की गई। चलिए प्रोग्राम में कुमार सानू जी की आवाज में एक और खूबसूरत गाना आज की प्रोग्राम में। कितना सुकून कितना आराम साजन की बाहों में, फिल्म का नाम साजन की बाहों में, उसी फिल्म का गाना आज की इस प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है। जरूर प्रोग्राम को आप सुनते ही रहना कुमार सानू जी की आवाज में। ये गीत

गाना बस प्रोग्राम भी पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में। चलिए प्रोग्राम में फिल्म सावन की ओर हम आपको ले चलते हैं। एक फिल्म जो 2006 में रिलीज किया गया है, कुणाल गांजावाला की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है।

जान की आवाज में ये गाना पेश की गई। फिल्म का नाम सावरिया, उसी फिल्म का गीत अभी आपने सुना। आज के प्रोग्राम में जो पेश की गई सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में, चलिए प्रोग्राम में एक पुरानी फिल्म का गीत की ओर हम आपको ले चलते हैं। फिल्म का नाम है साथी। लता मंगेशकर की आवाज में अब की बार ये गाना आप सुनते ही रहना रेडियो SBS की सरिये।

गाना बस आज की प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में आसरा उम्मीद है कि फिल्म साथी का गीत आपने सुना और बेहद पसंद किया है। मोहम्मद रफी और लता जी की आवाज में अब की बार ये गाना पेश किया जा रहा है।

रेडियो SBS के जरिए कुमार सानू और अलका जी की आवाज में ये गाना बस आज के प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में। रेडियो SBS का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है और आज का प्रोग्राम जरूर और जरूर सुनते ही रहना। चले प्रोग्राम में मोहित चौहान की ओर, मोहित चौहान की आवाज में ये गाना।

चौहान की आवाज में ये गाना प्रोग्राम में पेश की गई। आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में आसरा उम्मीद है कि गाना आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया। रेडियो SBS के जरिए जो पेश की गई है, चलिए प्रोग्राम में अब की बार हम

की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में रेडियो SBS के जरिए भी आपने सुना राहत फतेह अली खान की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चले प्रोग्राम में अब की बार ये गाना की ओर हम आपको ले चलते हैं उदित नारायण और अनुराधा पोटवाल जी की आवाज में।

आवाज में खूबसूरत सा गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। रेडियो SBS का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है। स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 03-22-66-66-11।

ही रहना। आज भी ये बहुत सी सुनने वालों बस रेडियो SBS का प्रोग्राम को फॉलो कर रहे हैं। कुमार सानू जी की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है।

आसरो मीठे की गाना आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया है। स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है। और अब की बार प्रोग्राम में हम आपको ले चलते हैं साउथ खान और प्रभा भारती की आवाज में ये गाना।

में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में हिट फिल्म परवाना फिल्म का गीत पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में। चलिए अब की बार उदित नारायण और अलका जी की ओर हम आपको ले चलते हैं। उदित नारायण और अलका की आवाज में खास गाना जो आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है और फिल्म का नाम है

आज की ये प्रोग्राम में पेश की गई पहले मोहब्बत फिल्म का नाम पहले मोहब्बत, उसी फिल्म से ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। रेडियो SBS का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है शहडोल ट्रैक से, हॉलैंडीज से ये प्रोग्राम आप सभी सुनने वालों की सेवा में ब्रॉडकास्ट किया जा रहा है और वो भी सालों से। राहत फतेह अली खान एंड हर्षदीप की आवाज में फटा पोस्टर निकला हीरो फिल्म का नाम।

अनुराधा पोटवाल के आवाज में ये गाना प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। एक गाना आज की प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है रेडियो SBS की जरिए। सोनू निगम और अनुराधा पोटवाल की आवाज में आपको पहले भी कहीं देखा है, फिल्म का नाम और उसी फिल्म से ये गाना।

पोर्टवेल की आवाज में गाना पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में फिल्म का नाम आपको पहले भी कहीं देखा है। रेडियो SBS का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है। मैं हूं आपका खिदमतगुजार रबीन। चले प्रोग्राम में अब की बार अभिजीत एंड साधना सरगम की ओर।

आज के प्रोग्राम में जो पेश की गई सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में आज का प्रोग्राम जरूर आप सुनते ही रहना। रेडियो SBS का जो पेश किया जा रहा है, एक बार फिर से मरहूम मोहम्मद रफी की आवाज में ये गाना आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है। एक गाना जो झनकार म्यूजिक में आप सभी

भीगी रात उसी फिल्म का गीत अभी आपने सुना जो आज की प्रोग्राम में पेश की गई है। चलिए फिल्म मॉडर्न इंडिया की ओर हम आपको ले चलते हैं। अगली बार शमशाद बेगम की आवाज में एक गाना पेश किया जा रहा है।

पुरानी फिल्म मॉडर्न इंडिया का गीत भी इसकी गई शमशाद बेगम के आवाज में। ये गाना भी आपने सुना आज के प्रोग्राम में। खूबसूरत पुरानी नगमे आप सब ही सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है और बहुत सी सुनने वालों बस प्रोग्राम भी इस वक्त सुनते हैं। यशुदास एंड प्रीति सागर प्रोग्राम में।

आनंद आश्रम उसी फिल्म का गाना पेश की गए यशुदास और प्रीति सागर की आवाज में। ये खूबसूरत प्यार भरी गाना भी आपने सुना जो आज की प्रोग्राम में पेश की गई रेडियो SBS की जरिए। चले प्रोग्राम में आशा और मुकेश जी की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है, नतीजा हमारी मोहब्बत का।

मुकेश सौर्य आशा जी की आवाज में ये गाना पेश की गई। फिल्म का नाम था रास्ते का पत्थर। उसी फिल्म का गीत बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में। चलिए मुकेश और लता की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है।

बीटल्स और लता मंगेशकर की आवाज में खूबसूरत सा गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई। फिल्म का नाम था राखी, उसी फिल्म का गीत अभी आपने सुना। आज के प्रोग्राम में जो पेश की गई सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में, सुनने वालों हर एक इन्फॉर्मेशन के लिए इन्फो के लिए टेलीफोन नंबर है 030-265-65-60। इसी टारगेट नंबर पर, टेलीफोन नंबर पर सभी और सभी इन्फॉर्मेशन इन्फो आप ले सकते हैं। लता मंगेशकर की

लता मंगेशकर की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में। सुनने वालों एक गाना और लता जी की आवाज में पेश किया जा रहा है। हम आपको ले चलते हैं फिल्म का नाम है

गाना प्रोग्राम में लता जी की आवाज में आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में पेश की गई रेडियो SBS के जरिए अभी आपने सुना। चलिए अब की बार किशोर कुमार की ओर हम आपको ले चलते हैं। गाना जो अब की बार प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में जरूर और जरूर सुनते ही रहना। किशोर कुमार प्रोग्राम में हम आपको ले चलते हैं। फिल्म का नाम आन मिलो सजना।

एडवांस में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई फिल्म का नाम था आन मिलो सजना। सुनने वालों स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 0322-66-66-11। इसी तार की नंबर पर टेलीफोन नंबर पर स्टूडियो की ओर हमेशा आप तार कर सकते हैं। मोहम्मद रफी और आशा जी की आवाज में फिल्म कुर्बानी, उसी फिल्म का गीत पेश किया जा रहा है। 1980 का फिल्म है, 1980 का फिल्म।

जी की आवाज में ये गाना प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में। चलिए अब की बार फिल्म राम बलराम, उसी फिल्म का एक गाना बस पेश किया जा रहा है लता मंगेशकर एंड मोहम्मद रफी की आवाज में।

सुनो बलो, हमारा आज का प्रोग्राम बस यहीं से खत्म समाप्त होने पर आ गए हैं। हमारा आज का प्रोग्राम जो है सुनने के लिए लाख लाख शुक्रिया, धन्यवाद। आसरा मीठे प्रोग्राम सुनकर और काफी पसंद किया है। मैं था आपका खिदमत गुजार रबीन। हर एक इन्फॉर्मेशन के लिए, इन्फो के लिए टेलीफोन नंबर है 030-265-6560। बस आप सभी सुनने वालों से हम फिर मिलेंगे।

हेलो नमस्ते और आदाब। मैं हूँ आपकी आरजे अंशिली क्रमलाल, जो आपका तहे दिल से स्वागत करती है प्रोग्राम गीतों के लहर पे। हेलो अलमाल, दिस इज यू आरजे अंशिली क्रमलाल, तो यू वार्ट वेलकम हेट इन इट प्रोग्राम गीतों के लहर। Wilt reageren? Kan het altijd. Surf naar de website www.radiosbs.nl of bel gerust met 030-262-6611. En voor alle andere info kunt u altijd bellen met 030-265-6560. Het eerste liedje van vandaag is...

0: हो गए।
1: हम आप में कुछ हो गया, कुछ मिल गया, कुछ खो गया इज द टाइटल सॉन्ग फ्रॉम द फिल्म हम तुम पे मरते हैं, खुशहुदूर लता मंगेशकर एंड उदित नारायण। चोरी चोरी सपनों में आता है कोई इस आयुध फिल्म चल मेरे भाई एंड इस खुशहुदूर अलका याचिक एंड अभिजीत। चल मेरे भाई इस फिल्म फन संजय दत्त, करिश्मा कपूर एंड सलमान खान। चोरी चोरी इज इट फोन लीजिए इन इत प्रोग्रामा गीतों की लहर फिया रेडियो SBS।

चढ़ाते रंग आपने सुना फिल्म यमला पगला दीवाना से। अगला गाना प्रोग्राम गीतों के लहर में है कोई मिल गया से, ऋतिक रोशन का फिल्म है। गाने के बोल है, इट्स मैजिक आई हैव गॉट द वाइब दैट यू नीड।

बाकी सब फर्स्ट क्लास है। आपने सुना अरिजीत सिंह और नीति मोहन की आवाज में फिल्म कलंक से, और अब आप सुनिए फिल्म हम दिल दे चुके सनम से। उदित नारायण और अलका याचने की आवाज में आप सुनिए चांद छुपा बादल में।

कुछ तो है फिल्म का नाम, और अब आप सुनिए। एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा से, अर्जुन सुखविंदर सिंह और पैरी की आवाज में, हाउस पार्टी सॉन्ग।

0: Churakje Dumera, Guria Chili. Deze keer is dit liedje gezongen door Benny de Jaal en Mol Malik en Anu Malik. En kwam uit de film Hangama 2. Uit de film Ghail komt dan Pyar Te Moet Zeker Tiho, Don't Say No, gezongen door Shabbir Kumar.
1: Please.
2: Thank you.
3: Varsha ji, कह दो कि तुम मुझसे प्यार करती हो।
2: तुम्हें कुछ भी हो जाए मैं तुमसे प्यार नहीं करती। अब पता चलेगा बच्चू कौन हूँ मैं।
3: मलिका शरारती है। वो तो ऐसे मजाक करती है, बहुत प्यार करती है मुझे।

सुना है तेरे दिल पे मेरा, कहीं ना कहीं नाम लिखा है। देसी केर खसों दो जुबेन नौटियाल है द फिल्म सनक। हाँ तो फैदर मैं शैलेंद्र सिंह मैथ द फिल्म जमाने को दिखाना है। होगा तुमसे प्यारा कौन।

सपनों का राजा कोई दिल में था मेरे समाया, आज मुझे मिल गया है, यही है यही है यही है मेरा प्यार. Dit prachtig liedje is gezongen door Shailendra Singh en Sulakshana Pandit en kwam uit de film Chalte Chalte. Gezongen door Jubin Nautiyal en Preetam komt het volgend liedje via Radio SBS in het programma Geeton Ke Leher. Uit de film Tadap komt Tu Mera Ho Gaya Hai.

आप हमारी जान बन गए सुसमधुर मिथुन, विशाल मिश्रा एंड अजीज कौर. दिस लीजिए क्वाम आई द फिल्म खुदा हाफिज. यू लस्टर नार एट प्रोग्राम गीतों की लहर फिया रेडियो SBS. Gezongen door Kishore Kumar en Manhar komt het volgende liedje uit de film Professor Pyarelal. Gaega Gaeja, Ormus Kuraeja.

जीना भी क्या है जीना, तेरी बाहों में जीना. इसके साथ दो सलमा आका एंड बप्पी लहरी. एंड het volgende liedje in het programma Gietom Kelleher is gezongen door Kamal Khan uit de film Jinni met Sunny komt Roeberoe.

0: है जनाब का?
1: क्या ख्याल है आपका?
0: तुम तो मचल गए, हो हो हो,
1: यूं ही फिसल गए। आ, आ, आ।
0: अच्छा, फिसलने का अगला लोकेशन?
1: बिन भेज रहा हूँ, संभाल के चुप क्या चाहे।

0: Non-stop de allerbeste hits op Radio SBS.
1: तेरा ख्याल मेरे दिल से जा नहीं सकता, तमाम उम्र मैं तुझको भुला नहीं सकता।

कि तू ही तो है। काश तुझे खबर होती ये जिंदगी तुझ बिन हर लम्हा मुझे तड़पाती है। मैं क्या करूं जिंदगी से भागकर कहां जाऊं।